सुप्रभात। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

एफएम बैंड पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

चिंतन। किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3। तीन बजकर 30 पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग 2, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4, कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 सुनेंगे आप कार्यक्रम आप

रात्रि का छाया गीत कार्यक्रम होगा 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 बजे सुनिए ढलती जायरात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फागुन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायक कलाकार भारत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुनेंगे उन्हीं के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, बरसात की एक रात। इस फिल्म से है, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों ने।

श्रोताओं, भारत भूषण जी भले ही स्वयं गायक नहीं थे, लेकिन संगीत प्रधान फिल्मों में उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली रही कि उनका नाम सुनते ही मधुर गीतों की पूरी दुनिया याद आ जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, रचना शैलेंद्र की, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ
1: भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शबाब फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का की धुन।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश।

0: करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: और आइए अब सुरैया की आवाज में सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत। कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और हंस राज बहल ने इसकी धुन बनाई है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम मल्हार, मुकेश की आवाज़, कैफ इरफानी के बोल, रोशन का संगीत।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
7: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: विविध भारती से आप सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: झुके हैं बादल
8: बालों के,
7: खिले हैं गुलशन
8: गालों के,
7: यही तो मौसम।

0: आज कहना
1: क्यों माने,
0: संभल के चलना
1: क्या जाने,
0: यही तो मौसम
1: मस्ती में जीने का
2: है। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में अब आपको सुनाते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र का रचित ये गीत सुनिए अब, जिसकी धुन बनाई है एस एन त्रिपाठी ने, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें। फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की

0: हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में

0: भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

0: दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहीं दूर

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, आर्को का संगीत है, फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम के अगले नगमे। रावण फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अकॉन और हमसिका अय्यर की आवाजों में। विशाल ददलानी ने इसकी रचना की है, संगीत है विशाल और शेखर का।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मीका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य, नक्श और प्रीतम की आवाजों में एजेंट विनोद फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एनी बडी कैन डांस। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहित चौहान, प्रिया पंचाल और तन्वी शाह की। मयूरपुरी ने बोल लिखे हैं, सागर जिगर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें साथियों कि आज अभिनेता भारत भूषण का जन्मदिन है, तो आज के फनकार कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा वो केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। सुनते रहिए विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में उन्हीं का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम बैंग बैंग।

Ta-dum-ta-dum-ta-ta-tum-ta.

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा,

0: तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप ABO की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जबलपुर का विविध भारती केंद्र। 9:30 हुए हैं। श्रोतावली जी सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून सन 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क, संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगाए।

कर रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं। वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के

अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आज़ादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग एफएम बैंड पर, ये विविध भारती जबलपुर है। आपको याद दिला दें 10:15 पर आपको सुनवाएंगे श्री संपत उपाध्याय पुलिस अधीक्षक जबलपुर से प्रशांत परमार द्वारा साइबर अपराध विषय पर ली गई भेंटवार्ता। अभी 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई

0: आई बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था कमल खस का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था।
2: एफएम बैंड पर ये विविध भारती जबलपुर है। अब सुनिए आज सुबह 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों की रिकॉर्डिंग।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, आज भी राज्य में अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे।

0: शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मिलो दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपए की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
3: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चलाया। हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा

नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेषण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। और भारत ज्ञान मंडपम मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे आज सुबह 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों की रिकॉर्डिंग। एफएम बैंड पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। अब सुनिए इनसे मिलिए क्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय से साइबर अपराध विषय पर ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है प्रशांत परमार।
1: नमस्कार मित्रों। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं और इसी वजह से अलग अलग प्रकार के अपराधी भी समाज में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। इन्हीं अपराधों के बीच में आज के डिजिटल युग में एक अन्य अपराध भी बहुत सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है, जिसे हम साइबर अपराध या साइबर क्राइम कहते हैं। ये साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे घटित होता है और पुलिस प्रशासन इससे कैसे निपटता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है जबलपुर नगर के पुलिस अधीक्षक 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री संपत उपाध्याय जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से साइबर अपराध हैं जो इस समय सामान्य रूप से देखे जा रहे हैं, जिससे आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है।
2: साइबर क्राइम एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि अलग अलग तरीकों से होने वाले अपराधों को दिया जाता है। इसमें मुख्यतः कोई भी अपराध जिसमें मोबाइल का, इंटरनेट का उपयोग हुआ हो घटित करने में, उसको साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। इसमें पुराने ट्रेडिशनल अपराधों से

0: एक यह चीज अलग होता है कि जो अपराधी है वो आपके सामने नहीं होता और वो अपराध आपके साथ घटित कर देता है। अभी जो प्रचलन में अपराध देखने में आ रहे हैं उसमें ओटीपी के माध्यम से फ्रॉड, यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड, आपके द्वारा मैसेज और ईमेल इत्यादि पे लिंक भेजते हैं उसके माध्यम से फ्रॉड, इसके अलावा लोन ऐप के माध्यम से फ्रॉड लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे काफ़ी बड़ी मात्रा में और बड़े वॉल्यूम के फ्रॉड हो रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से भी कई तरह के अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी अपराध जिसमें इंटरनेट और मोबाइल इत्यादि के उपयोग से आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही हो, आपको परेशान किया जा रहा हो, आपको बुलिंग किया जा रहा हो, वो सभी इसकी श्रेणी में आते हैं।
1: जी, जैसा कि साइबर क्राइम के बारे में कहा जाता है, ये एक वर्चुअल स्पेस में होने वाला क्राइम है, तो पुलिस प्रशासन के लिए साइबर अपराध किस प्रकार की चुनौती है और इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार के नवाचार करता है, खासतौर पे जब हम जबलपुर की भी बात करें तो इसके बारे में भी बताइए।
0: साइबर अपराध का चैलेंज यही है कि जो अपराधी है वो हमारे आसपास नहीं होता। अगर बात करें जबलपुर में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में तो ज़्यादातर केस में अपराधी हमारे जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर और कई मामलों में देश के बाहर के रहते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। साथ ही साथ आज के डिजिटल युग में ट्रांजैक्शन जो बैंक के हैं काफ़ी फास्ट हो गए हैं। जो भी अपराधी रहता है उस पैसे को अपने खाते में, म्यूल अकाउंट एक शब्द आता है जो किसी अन्य व्यक्ति का खाता उपयोग कर रहा होता है, तो उन खातों से कई खातों में पैसा होते हुए और कहीं फॉरेन के अकाउंट में चला जाता है। कई बार अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट में देश के अलग अलग कोनों से विड्रॉ होता है, तो ये एक चैलेंज रहता है। साथ ही साथ डिजिटल काम करने वाली जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो अथवा टेलीग्राम हो या अन्य हो, ये सभी बाहर की कंपनियां हैं, तो हमको जब जानकारी इनसे चाहिए होता है तो उस समय जानकारी ये काफ़ी कई बार डिले देते हैं, कई जानकारियां नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जांच प्रभावित होती है। अगला जो महत्वपूर्ण चैलेंज दूरी का है, कोई भी एक खाते से सपोज फ्रॉड हुआ, उसके खाते से कोई पैसा निकला और वो कश्मीर के अकाउंट में गया, वो पैसा तमिलनाडु के अकाउंट में गया, वो पैसा आसाम के अकाउंट में गया, तो एक ही फ्रॉड का पैसा देश के कोने कोने में चला जाता है। फिर वहाँ टीम जाती है, ढूंढती है, तो खाता ऐसे व्यक्ति का मिलता है जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम से खाता खुला है, या उसको एक नॉमिनल 1000-2000 की राशि देके उसका डॉक्यूमेंट लेके किसी ने खाता खुलवा लिया है, फिर वहाँ से आगे अपने को ट्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा ये चैलेंज रहता है, जिसमें जबलपुर पुलिस ने भी कामकाज शुरू किया है, इसमें साइबर सेल का विस्तार किया गया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी श्री अंजुल मिश्रा जी उसके प्रभारी हैं, वहाँ पे टीआई रैंक के अधिकारियों की पदस्थापना की है और कुल करीब 30 से 35 का स्टाफ है जो लगातार लगा हुआ है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया गया है।
1: जैसा कि आपने पूरा तंत्र हमें समझाया कि किस तरीके से साइबर सेल है वो काम करता है, कोई ऐसा प्रकरण, कोई ऐसा मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ जो आप साझा करना चाहें?
0: अभी जो बड़े जबलपुर की ही उदाहरण लिया जाए तो जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी के मामले आए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक पीड़ित थे, उनको इन्वेस्टमेंट का टिप्स मिला और बताया गया कि इस आप ऐप के माध्यम से पैसा लगाएं। उन्होंने उस ऐप के माध्यम से पैसा लगाया और वो पैसा उनके जो ऐप का मॉड्यूल था उसमें बढ़ता हुआ दिखता था, कुछ पैसा उनको वापस मिला जब उन्होंने माना, और इस तरह से वो अपने लोन लेके, रिश्तेदारों से उधार लेके पैसा उसमें लगाते गए। वो राशि धीरे धीरे उनकी काफी बड़ी करोड़ों की राशि हो गई। फिर उन्होंने कुछ निकालना चाहा तो वो पैसा उनको मिलने से मना हो गया, तो फिर उनको एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर निकाले, सभी लोगों से बात करना चाहा जो भी उस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के टिप्स ले रहे थे, तो उसमें पता चला कि ग्रुप में 125 लोग हैं और 124 लोग फ्रॉड वाले के ही नंबर थे, ये एकमात्र उसमें जेन्युइन व्यक्ति थे। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल तरीके जो फ्रॉडस्टर हैं वो अपनाते हैं। ऐसे ही एक और घटना मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने व्यक्ति से दोस्ती की और बताया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं और हमारे पास बहुत सारा पैसा गिफ्ट है मैं जो आपको देना चाहता हूं, और कस्टम ने हमको पकड़ लिया है यहाँ दिल्ली में, उसको छुड़ाने के लिए हमको पैसा लगेगा, उनसे काफ़ी भारी मात्रा में ले लिए पैसा। तो इस तरह के घटनाएं होती हैं और इसमें सावधानी रखना और बात करना, वेरीफाई करना, यही इसके बचाव का उपाय है।
1: जी जी, मैं ये जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कि ऑनलाइन धोखाधड़ी जब होती है तो उसके बाद किसी एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए सबसे पहले?
0: जैसे ही आपका धोखाधड़ी का आपको पता चले 1930 पे कॉल आपको करना चाहिए और वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, साथ साथ आपको अपना अकाउंट ब्लॉक कराना चाहिए। आप अगर साइबर सेल आ सकते हैं, जहाँ भी आप हैं वहाँ के साइबर सेल में जाइए, नहीं जा सकते तो नज़दीकी थाने में जाके आपको रिपोर्ट कराना चाहिए। इसमें जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे 1930 पे पैसा होल्ड होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सावधानियाँ तुरंत आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे और भी कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी

0: शेयर करना चाहिए।
1: यानी कि अगर कोई ऐसा अपराध आपके साथ घटित होता है तो 1930 सबसे पहला ये संपर्क है जिससे हमें अपनी जो धोखाधड़ी हुई उसकी शिकायत करनी चाहिए। सर, हम अक्सर ये देखते हैं अलग अलग तरीके के फ्रॉड जो ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। पहले तो एक पैटर्न था जिसमें OTP के माध्यम से वो अपराध घटित करते थे, अब हम देख रहे हैं कि अब OTP की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये APK क्या चीज़ है, APK जिसमें OTP की भी ज़रूरत नहीं होती और सामने वाले के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: जी बिल्कुल, ये APK एक तरह का फाइल रहता है और अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक बग है या आपका वायरस है जो फ्रॉडस्टर है वो हमारे मोबाइल में मैसेज के माध्यम से अथवा मेल के माध्यम से किसी भी तरीके से हमारे मोबाइल में भेजता है, और जैसे ही हम उसका लिंक टच करते हैं या जो भी उसका मैसेज टच करते हैं वो फाइल हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। फाइल डाउनलोड होते ही जो फ्रॉडस्टर है, अपराधी है, उसको हमारे मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। अब उसको OTP मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती चूँकि मोबाइल का पैरेलल एक्सेस उसको मिल चुका है, तो आपके जितने भी OTP मैसेज आते हैं वो उसको मिल जाएगा। आपका वो पासवर्ड बदल सकता है, आपके ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो मोटा मोटी ये समझें कि अगर APK फाइल आपके लोड हो गई है तो आपका मोबाइल का लगभग क्लोन कॉपी अथवा आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास हो जाता है, इसलिए बिना OTP के भी उसमें फ्रॉड हो जाता है।
1: जी सर, हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ वर्षों से और ख़ासतौर पर कोरोना के बाद से जो विद्यार्थी वर्ग है या जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता बन गया है मोबाइल। अपराधी जो विद्यार्थी और युवाओं के साथ फ्रॉड करते हैं, कैसे वो उसके चपेट में आते हैं, क्या तरीका, कैसे उससे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: कोई भी बड़ी नई तकनीक आती है तो उसका फ़ायदा नुकसान कई सारे होते हैं। निश्चय ही मोबाइल इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अध्ययन करने में बहुत उसकी मदद मिलती है, परंतु साथ ही साथ जो निगेटिव उसका तत्व है कि बहुत सारे लोग जो आपके बच्चे के पास, युवाओं के पास नहीं आ पाते, मोबाइल के माध्यम से वो उनसे जुड़ जाते हैं। सबसे कॉमन उनसे चीटिंग का तरीका या उनको भावनात्मक रूप से आहत करने का तरीका इम्पर्सोनेशन है। व्यक्ति कोई भी XYZ है और अपना कोई अलग नाम से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट वगैरह बना के सक्रिय हो जाता है। कई बार युवतियों से खासतौर पर दोस्ती करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बाद में वो धोखाधड़ी और भावात्मक रूप से काफ़ी उसमें चोट और अपराध की श्रेणी तक भी वो घटनाएं पहुंचती हैं। जो हमारा युवा वर्ग है, कई बार मोबाइल पे जो भी जानकारियां मिलती हैं, जो वर्चुअल उनके दोस्त होते हैं, सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं, उनको वास्तविक मान बैठते हैं, जबकि चांसेज हैं कि वो वास्तविक हो, चांसेज हैं कि वो पूरा ही फेक हो। तो इस चीज़ पर हमारे युवाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो वर्चुअल व्यक्ति दिखता है सोशल मीडिया पर या अन्य वेबसाइटों पर, वो सही नहीं भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। इसके अलावा जो युवा काफ़ी आजकल ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, वैसी स्थिति में भी गलत वेबसाइट इत्यादि मिलते जुलते नाम की हो जाती है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपयोग करते हैं, उसमें भी इंटरनेट बैंकिंग में कई सारे केस आए हैं जिसमें बैंक के मिलते जुलते नाम के वेबसाइट बनी है और उससे वो चीटिंग हुई है। तो इसमें युवाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, UPI का, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, खासतौर पर बच्चियां जो डालती हैं, और उसके संबंध में भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
1: जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं या फिर, उनको इस अपराध से बचाने के लिए अभिभावकों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए उन्हें?
0: प्रत्येक अभिभावक को जो हमारा अनुभव बताता है कि बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि क्या है, अगर नाबालिग बच्चा है विशेष तौर पे, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। ज़्यादातर मोबाइल और जो सिस्टम है उनमें चाइल्ड लॉक बना रहता है कि बच्चों को किस चीज़ का एक्सेस देना है, नहीं देना है। इसके अलावा उनका अन्य जो गतिविधि है उसकी भी रिपोर्ट रहती है। और सबसे अच्छी बात कि अपने बच्चों से बातचीत करना, अगर आप बच्चे से एक दोस्त के रूप में पूरी बात खुल के बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हो सकता है ऑनलाइन कोई फ़ोन करके उसको डरा धमका रहा हो सकता हो AI से उसकी कोई फ़ोटो गलत तरीके से बना लिया हो कोई व्यक्ति और उसको परेशान कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से क्या उसकी गतिविधि चल रही है उस पर नज़र रखना, और उनसे लगातार बातचीत करना ज़रूरी है, उनको एक कम्फर्टेबल माहौल देना जरूरी है जहाँ कोई समस्या हो तो बता सके। साथ ही साथ जैसे ही उनकी उम्र होती है, इंटरनेट मोबाइल इत्यादि और कंप्यूटर का वो अलग से उपयोग करना शुरू करते हैं, उनको इनके निगेटिव जो चीज़ें हैं या जो आपराधिक तत्व उन पर सक्रिय हैं उनके बारे में भी उनको बताना, अवगत कराना और काउंसिलिंग करना आवश्यक है।
1: जी सर, एक टर्म आपने इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, तो हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक पे आधारित जो अपराध हैं ये बहुत आजकल हम देख रहे हैं, इससे पुलिस कैसे निपटती है, क्या उनकी तैयारी होती है?
0: डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है अभी के समय में। अभी भी ज़्यादातर लोग, खासतौर पे गांव देहात के लोग और भी अपने बुज़ुर्ग लोग मान के चलते हैं कि जो चीज़ फ़ोटो में दिख रही है वो सही हो।

0: वो झूठी नहीं हो सकती। जो चीज़ कान में सुनाई दे रही है साक्षात, वो गलत नहीं हो सकती। आजकल AI के माध्यम से किसी फेमस सिंगर के आवाज़ में लोग गाना बना सकते हैं, किसी का वीडियो भी किसी तरीके से बना सकते हैं, फोटो किसी तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चैलेंजिंग हमारे लिए ज़रूर रहता है। कोई भी ऐसी शिकवा शिकायत आती है तो हम उसको हैंडल करें, अटेंड करें। साथ ही साथ लोगों को भी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पास भी कोई सूचना आती है जो को लगता है कि हमको सामान्यता विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है, कभी आपसे ज़िंदगी में पैसा नहीं मांगा और वो पैसा मांग रहा है, तो इसमें सोचने की ज़रूरत है कि यार उसी का अकाउंट है, या ऐसा तो नहीं कि उसकी फोटो लगा के DP लगा के किसी अन्य ने अकाउंट बना लिया, उसके नाम पे पैसा मांग रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है फेसबुक व्हाट्सएप पे, आपके मित्र की दोस्त की फोटो लगा के लोग पैसे मांगने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारी गतिविधियाँ आपको दिख सकती हैं इंटरनेट पर, कोई व्यक्ति की ऐसी फ़ोटो दिख रही है जो आपको लगता है कि सामान्यता उसकी नहीं हो सकती है, तो उसको और गहराई से अपने को देखने की ज़रूरत है। तो पहला तो सावधानी यही है, और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हमको आपको सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। जो चीज़ सुनाई दे रही है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो हमारे सामने है, वो सही नहीं भी हो सकती है, ये मानना जरूरी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज के क्षेत्र में भी। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसको वेरीफाई कराना जरूरी है
1: जी। साइबर अपराधी हम देख रहे हैं वर्चुअल स्पेस में ये अपराध घटित करते हैं, क्या इनको ट्रेस करना संभव है और ये कितना कठिन कार्य है?
0: साइबर अपराधी बिल्कुल ट्रेस हो सकते हैं, जैसा हमारी पूर्व के भी चर्चा में छोटी बात आई थी, जो ट्रेस करने के तरीके हैं पुलिस के पास, बाकी संसाधन केंद्र सरकार भी उसमें काम कर रही है, करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें चैलेंज फैलाव का है भौगोलिक रूप से। किसी अन्य देश से सर्वर संचालित हो रहे हैं और अपराध यहाँ घटित हो रहा है। जो आरोपी है वो देश के किसी अन्य कोने में 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और उसने फ्रॉड 25,000 रुपये का किसी का किया, वहाँ जो व्यक्ति का फ्रॉड हुआ उसके 25,000 बहुत बड़ी राशि है, और आपकी टीम जाती है उन जगहों पे चेक करने, वो समय रिसोर्स लगता है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा लगता है। फिर इसके अलावा जो VPN का सिस्टम आजकल है, VPN में बहुत सारी चीज़ें हाइड कर लेते हैं लोग, आपको जो फॉरेन मल्टीनेशनल है उनका भी मैंने चैलेंज बताया कि कई बार जानकारी आने में लैग होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसको लेके काफ़ी संवेदनशील हैं, और I4C हुआ, साइबर स्टेट का हुआ, जिलों के साइबर टीमें हुई, लगातार इनका स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, और बहुत हाई प्रोफाइल मामलों में लोगों की अरेस्टिंग हुई है, न केवल मध्य प्रदेश पुलिस ने बाकी दूसरे राज्यों से भी अरेस्टिंग हुई है। तो सभी लोग लगातार लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इसमें सबके संयुक्त प्रयास और लोगों के सावधानी से नियंत्रण आएगा
1: जी। सर चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: भय और लालच दो ही कारण हैं साइबर अपराध में फंसने के, सामान्यतः महत्वपूर्ण यही दो कारण हैं। इसमें भय वह कारण है जिसमें आपको डरा धमका के साइबर बुलिंग के माध्यम से आपके गलत तरीके से फोटो वीडियो इत्यादि बता के आपको लोग कहते हैं कि आप पैसा दो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये फोटो शेयर कर दूंगा। एक डिजिटल अरेस्ट की भी बात आती है जिसमें कहते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस का हूँ, मैं बॉम्बे स्पेशल सेल का हूँ, कस्टम का हूँ, CBI का हूँ, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर गलत गतिविधि में उपयोग हुआ है, आप इतना पैसा यहाँ पहुँचाओ नहीं तो आप जेल चले जाओगे
1: जी।
0: तो ये डरा के धमका के लोगों का प्रयास करते हैं। दूसरा लालच का है जो इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने कही थी कि लोग अधिक रिटर्न के लालच में फंस जाते हैं और गलत जगह पे बिना वेरीफाई किए पैसा लगाते हैं, वहाँ उनका पैसा डूब जाता है। तो ये दो मनोभाव हैं और इंसान में ये जब से इंसान का जीवन रहा है तब से रहा है, हर इंसान को भय होता है, हर इंसान को लालच होता है सामान्यतः। तो इन दो मनोभावों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी सावधानी से होगा, जागरूकता से होगा। खासतौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो संवेदनशील हैं इसमें, जिनके रिटायरमेंट का पैसा उनके पास है, और अपने जबलपुर में ही 4-5 केस आए जहाँ रिटायर्ड लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग लगा दी। बच्चों बहुत संवेदनशील हैं क्योंकि देश दुनिया चीज़ों के बारे में उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको समझाने और सावधानी रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कोई घटना होती है तो उसको हमको आत्मग्लानी या शर्म नहीं करना है, हमको तत्काल अपना जो भी व्यक्ति है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं उसको हम बताएं, और जो 3 स्थान बताए गए आपका 1930 पे कॉल करना है, साइबर सेल में रिपोर्ट करना है, थाने पर रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट कराएं। हम सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से निश्चय ही हमको इसमें सफलता मिलेगी।
1: सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी जानकारी साइबर अपराध और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साइबर अपराध विषय पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय से प्रशांत परमार की बातचीत। FM बैंड 102.9 MHz पर आकाशवाणी।

जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। अब सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर श्रृंगार। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत वो आधारशिला है जिस पर संगीत की इमारत खड़ी होती है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ऐसा कोई गाना नहीं है जो किसी न किसी राग से प्रभावित ना हो या उस पर किसी राग की छाया ना हो। फिल्म चिचोर अपने मिठास भरे गानों के लिए जानी जाती है। इसी फिल्म का एक गाना है राग यमन पर आधारित। हेमलता और येसुदास ने इस गाने को आवाज़ दी है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में है। गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म अजनबी का ये गाना राग शिवरंजनी पर आधारित है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत राग दरबारी पर आधारित है। इस गाने को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत राग बागेश्री पर आधारित है। इस गाने को हमने फिल्म अनवर से लिया है और आवाजें हैं क्षितिज और शिल्पा राव की।

0: फिल्म अनवर के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुर श्रृंगार अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जबलपुर का विविध भारती केंद्र। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं श्रोताओं, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को सुबह 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऑनलाइन योग सत्र में हिस्सा लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-315-7008 1800-315-7008। इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य योग उत्सवों के पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी नागरिक अपने निजी मोबाइल या डिवाइस से इस मुहिम में अलग अलग शामिल हों और स्वस्थ भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को सफल बनाएं। ये थी योग दिवस से संबंधित सूचना। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 11 बजे हैं और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस प्रोग्राम में हमने चुनी है लाइट ऑफ एशिया फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म माया। इस फिल्म के गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इन गानों को संगीतबद्ध किया सलील चौधरी ने। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल से

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता, आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म माया के नगमे। दोस्तों, जाने माने सैक्सोफोन आवाज मनोहारी सिंह ने यूं तो न जाने कितनी फिल्मों में अपने फन का कमाल दिखाया है। इस खास गाने जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जो अगले गाने के रूप में आप सुनेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ यह कि जो इस कलाकार को की फ्लूट बजाना था वो पहुंचा नहीं, तो संगीतकार सलील चौधरी ने मनोहारी सिंह से ये अनुरोध किया कि आप थोड़ी तैयारी के साथ की फ्लूट क्यों ना बजा लें, और उन्होंने थोड़ी सी रिहर्सल के बाद की फ्लूट को भी उतने ही अधिकार से बजाया, और ये शुरुआत में प्रीलूड में जो की फ्लूट बजी है वो मनोहारी सिंह का कमाल है।

0: इस गाने को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो महसूस किया होगा कि इस गाने में शुरुआत में की फ्लूट बजी है और बीच में सैक्सोफोन भी, और ये दोनों ही वाद्य बजाए थे मनोहारी सिंह ने।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: माया फिल्म का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए, सुनिए।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो
3: दोस्तों, विविध भारती जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुना रहे हैं फिल्म माया के गाने। इस फिल्म के गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इन गानों को संगीतबद्ध किया सलील चौधरी ने।

0: फिल्म माया के इस गाने में लता मंगेशकर के साथ हेमंत कुमार बिल्कुल नहीं थे, और यह आवाज़ थी द्विजेन मुखर्जी की, जो हूबहू हेमंत कुमार से मिलती जुलती आवाज़ रही और काफ़ी गाने इनके खाते में आए।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: फिल्म माया का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे जबा मैं तेरी मीठी करूँगा यहाँ जिंदगी है क्या सुन मेरी जान।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आज की एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हमने आपको सुनाए फिल्म माया के गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार सलील चौधरी। एफएम बैंड पर यह विविध भारती जबलपुर है। एक सूचना आपको दे दें, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को सुबह 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऑनलाइन योग सत्र में हिस्सा लेने के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-315-7008, 1800-315-7008। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर तुरंत पंजीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य योग उत्सवों के पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी नागरिक अपने निजी मोबाइल या डिवाइस से इस मुहिम में अलग अलग शामिल हों और स्वस्थ भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को सफल बनाएं। ये थी महत्वपूर्ण सूचना खास आपके लिए। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 11:30 हुए हैं और रविवार को इस समय आप सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं गजल से। शायर हैं कतील शिफाई और फनकार हैं जगजीत सिंह।

नड्डे की आवाज़ में श्याम शर्मा का लिखा ये गीत आपने सुना। और अब गज़ल, शायर हैं मुनीर नियाज़ी, आवाज़ ग़ुलाम अली की।

0: सुमन कल्याणपुर के गाए इस गाने के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दें चमन सालवार को, नमस्कार।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। अभी 12:05 से आप सुनेंगे यादों की महफिल। 1 बजे से आरंभ होगा सुरीला सफ़र।

2 बजे फिल्म संगीत हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं और 2:30 से आज आप सुनेंगे विविध भारती की विविध रंगी विविधा।

0: अपराह्न 4 बजे पिटारा खुलेगा और आज का क्रम होगा उजाले उनकी यादों की। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत और 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:45 पर संगीत सरिता का प्रसारण होगा और शाम 7 बजे से विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे क्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष में आज क्रम होगा साज और आवाज। रात 8 बजे आप सुनते हैं झलकी कार्यक्रम चित्रलोक में। रात 8:15 पर चित्रलोक में नई फिल्मों के गाने आपको सुनाए जाते हैं। 8 बजे आप सुनते हैं झलकी हवा महल कार्यक्रम में। रात 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार और रात 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। रात 10:30 पर आप सुनेंगे इस सभा का और इस प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। FM बैंड 102.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये विविध भारती जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने

0: का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कमर जलाल आबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिकीय गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा, वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद। हाँ, एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ, तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है। ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओ कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है।

0: ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो

अद्भुत है, चले जाना, जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है, वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा, और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिजाइन पर ध्यान दिया है, या आपको जब आप इसे खरीदते हैं तो इसकी डिजाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिजाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं, तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोता कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोता, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा, वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवारने कर संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं।

0: काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है। उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है। दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफ़र हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हम सफ़र बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।
1: रंग में है

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजा

0: सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है, जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहाँ कुंदन और मीनाकारी का काम होता है? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना, दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र कजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है हुस्न भी है ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है, आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, और इसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईने आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओ, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिसे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन, कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति

0: मैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, आप सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
2: बच्चों जय हिंद।
3: जय हिंद।
2: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी, मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी, सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज 14 जून है, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हमारे जीवन में रक्त यानी खून कितना महत्वपूर्ण होता है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत हो, तब रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इस दिन यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि हम उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दे सके जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। हालांकि आप बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही तो कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना? बच्चों कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ नए दोस्तों से, लेकिन उसके पहले क्यों ना सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी।

शुदा नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के हिसाब से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण कर।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गंधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज। जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ,

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर।
0: बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुष्टासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी।
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना। और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं।
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया। शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया। यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते।
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए। युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय, इसीलिए

0: सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: कंधारी, देखो मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो प्रभु की छाया।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहाँ जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे। हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी। आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली,
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में। तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी। हाँ
0: अच्छा
1: ठीक है, मतलब
0: हाँ
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ
0: जी
1: बैठ के
0: जी
1: हंसी मजाक चलती
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ हाँ
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी जैसे
0: जी।
1: घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी। हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत हुए। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ,
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई थी,
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक
1: तो
0: थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अब अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन

0: देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया।
1: भीतर
0: वो
1: होता
0: फिर
1: है,
0: गर्व
1: वो
0: महसूस करने
1: महसूस
0: लगे।
1: किया। मितुल जी, कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
0: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
0: हाँ,
1: ने?
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि
1: खूबसूरती के
0: मेरे
1: साथ,
0: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
1: बोलो
0: तुम
1: तुम
0: कौन
1: कौन
0: हो,
1: हो।
0: बोलो तुम
1: आहा,
0: कौन
1: क्या
0: हो।
1: बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
1: जी।
0: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
1: तुम
0: तुम।
1: थे।
0: हाँ,
1: आहा,
0: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा
0: क्या
1: प्यार ही
0: मेरा
1: पसंद है
0: प्यार पसंद है। तो
1: तुम्हें
0: ये भी कितना सुंदर सुंदर से
1: बहुत
0: गीत है
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत हैं ये,
0: हर
1: हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत हैं।
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
1: जी
0: लिखे
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला, और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या-क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ
1: हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीज़ें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफ़ेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफ़ेद जामुन, हाँ काले
0: हाँ
1: नहीं सफ़ेद,
0: सफेद हाँ
1: खैर एनीवे वाटर एप्पल या ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कढ़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा
1: हाँ, तो
0: आपको।
1: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए, ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे, तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
0: अच्छा,
1: मजबूत है।
0: क्या

0: बातें।
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी।
0: उसको खड़ा किया है
1: हाँ
0: जी। मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर,
0: हम्म,
1: जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी,
0: हम्म,
1: बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया,
0: जी
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो,
0: हम्म,
1: ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं
0: जी
1: ना
0: बिल्कुल,
1: लक्ष्मी
0: नवरात्रा
1: के,
0: में मनाते
1: हाँ
0: हैं, दीपावली में।
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था मुझे।
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती
1: हाँ,
0: थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
0: जी
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था? कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना? हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
0: जी
1: में।
0: जी जी
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
0: आपकी
1: होता है
0: डेस्टिनी
1: आपके,
0: में।
1: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
0: अच्छा
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
0: जी,
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो
0: जी,
1: उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया
1: मकसद
0: आपको
1: मिल गया,
0: जी।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं, वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल
1: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
0: बिल्कुल,
1: आपका जीवन बदल जाता
0: बदल
1: है।
0: जाता है।
1: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफ़ेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते
1: तो
2: रहे।
1: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: अनंत है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।

0: ऑयल पेंटिंग।
1: ऑयल पेंटिंग, जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो। तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध
0: बंद
1: जाते
0: जाते
1: हैं,
0: हैं जी।
1: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, ये
1: हाँ,
0: आपका अपनी कल्पना शक्ति पर
1: वही तो, वो
0: निर्भर
1: कल्पना
0: करता है।
1: शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र
0: तो
1: है।
0: आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
1: आपको
0: आर्ट।
1: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूं।
0: अच्छा जी।
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूं तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूं, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूं कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
0: जी।
1: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
0: दे बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी
1: नहीं,
0: कला को एक कलाकृति रहने दिया है।
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप
0: जो
1: है वो
0: हुनर
1: कम हो
0: है।
1: जाएगा।
0: हाँ
1: तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: वो
0: जी
1: वैसे ही रहता है वहां पर।
0: जी
1: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
0: जी
1: लिए,
0: बिल्कुल
1: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते
0: जी।
1: हैं।
0: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप।
1: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे
0: जी
1: हैं और
0: जी
1: आसमान की बात कर
0: बात
1: रहे
0: कर रहे
1: हैं।
0: हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी,
1: लोगों के पास। जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में ख़त्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए।
0: जी
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न
0: कैरिकेचर
1: आर्ट
0: है,
1: है,
0: इस तरह का सभी तरह के आप।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने।

0: ने, वैन गॉग है या वैसे उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
1: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या-क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं। जो
0: अच्छा,
1: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं।
0: हाँ
1: जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं,
0: हाँ
1: छोटी छोटी गिलहरियां
0: वो आपके
1: हैं,
0: घर के
1: वो
0: आजू बाजू रहती हैं।
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं, और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल
0: जी।
1: है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर
0: भर
1: दे
0: दे
1: रे
0: रे चोली।
1: झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये
0: मदद
1: सब
0: भर
1: भगवान
0: दे।
1: है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और
1: अभी
0: कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: हैं? ये तो आप मजाक कर रही
1: नहीं नहीं नहीं बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज
0: तेज
1: है, तगड़ी है, बड़ी,
0: है।
1: और कुत्तों को डराती है।
0: 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है जैसे मैंने।

0: कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं तो हो जाता है सब।
1: जी जी ये तो
0: जी
1: बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
0: वो परिवार है और सबके नाम है,
1: जी जैसे
0: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है ना,
1: अच्छा
0: जैसे ब्राउनी है,
1: हाँ
0: ब्लैकी
1: उनको
0: है,
1: पता ही उनके नाम
0: हाँ
1: है।
0: हाँ सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है,
1: अच्छा
0: सो
1: ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब बहुत हो गया।
1: जी कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
0: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
1: हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
0: पूरा पूरा जंगल है और
1: जी
0: बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
0: जरूर
1: भर दे रे
0: सुनवाइए,
1: झोली।
0: जरूर।

0: सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे जो।
1: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
2: जी
1: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
2: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और

0: देश को सबसे आगे रखिए, ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए, और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
1: जी
0: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
1: जी
0: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
1: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है,
1: जी
0: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

से मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे

ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज़ का तलबगार वो भी नहीं, मैं भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबें जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

तरहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हीरो से।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए

0: का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है साथिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। भाग 3 प्रस्तुति चारूबाला खरे। विशेष जयमाला में आज सैनिकों की शौर्य गाथा आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा। प्रस्तुति है तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कागज के जेवर। लेखक हैं अभिलाष। निर्देशन पुरुषोत्तम थारवेकर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6:05

30 मिनट और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 220। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गज तत्वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। भाग 4 प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। लेखक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार बितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण भाग 3। सोशल मीडिया के वाद विवाद, समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूरी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम। लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छाया गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेख औसर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत MM करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गजतत वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गजवाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की

0: जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही, वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तक वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम विशेष जयमाला। आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शुदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शुरदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

0: पंचबतम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम।
1: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में इस समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास। जब
0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को

0: दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे

0: समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
1: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हितलाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
3: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जाँच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज यूट्यूब पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, यूएवी तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसू द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
2: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
3: कौन है?
2: ओ, मैं हूँ मंगरू।
3: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
2: पायला की पटवारी ताई।
3: जीते रहो मंगरू।
2: पटवारी जी घर में है क्या?
3: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
2: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
3: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
2: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
3: लो वो आ गए।
2: राम राम पटवारी जी, राम राम।
4: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
2: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
4: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
2: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
4: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
2: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
4: अरे न्योता?
2: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
4: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
2: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहां नहीं हैं।
4: तो क्या तुमने पूरे

0: गोदावत दी है।
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
0: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी।

0: तुम्हारे दिल जिगर को मान लिया हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गांव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम है? पानी की तरह पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
0: ठीक कहते हो मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा लेकिन बच्चू को नाको चने चबवा दूंगा।
0: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
0: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
0: अच्छा, राम राम। अच्छा राम राम, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
0: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान
3: है। क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? अच्छा, जाओ,
4: जाओ।
1: अरे मंगरू, मंगरू
3: ओ क्या बात है माधो,
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ देख मैं तो, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ।
3: हाँ, मैं भी आता हूँ।
5: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़ा सही वक्त भी आया। आइए आइए बिना जी।
5: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
5: मेरी रकम दे रहे हो ना।
3: जी, जी वो...
5: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
5: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
5: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची।
3: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा धर्म से, धर्म।
5: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
3: चौधरी जी मालिक, मालिक
5: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
3: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
5: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
3: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पांव पड़ता हूँ आपके। आप
6: मंगरू
3: पटवारी जी, पटवारी जी।
6: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव

0: पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3,000।
0: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
0: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
0: अच्छा भैया, जय राम जी।
2: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
0: तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
2: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
0: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
2: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
0: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
2: नहीं, वो क्या पटवारी जी?
0: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
2: पर गलती उसी की पटवारी जी।
0: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
2: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
0: देखो,
2: क्या करूँ?
0: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
2: लेकिन
0: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
2: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी। और भगवान जानता है, जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
0: कौन से रुपए भाई?
2: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
0: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
2: काहे?
0: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
2: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
0: अच्छा, ये लो मंगरू।
2: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है? कैसे कागज है?
0: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
2: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
0: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
2: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
0: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व तो समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
2: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
2: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो, तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
2: अच्छा,
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
2: 11,000?
0: हाँ भाई।
2: सच सच कह रहे पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
2: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत करना।
2: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर
3: अजी मैंने कहा अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
2: आ गए पंडित जी, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए,
4: चलो चलो।

कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68

रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत कर...

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: ही थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सहारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: देखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ
1: ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गुंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद। फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन।
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
3: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
4: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।
3: वीको वज्रदंती।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नॉय बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल है।
2: जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके सहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और
0: नव प्रवर्तन कार्यों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।
3: इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर

हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने

वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्स और 102.9 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 11:10 हुए हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं, शुभरात्रि, जय हिंद।

अभी ऑन एयर चालू है। माइक चेक करें, एक नंबर। कंसोल का टाइम है 5:27, 7, 8, 9, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड। ओके, टाइम 5:27, 24:25, 26 ऑन ईयर के नीचे वाला। ये ऑन ईयर परमानेंट चालू है। हाँ, ऑन ईयर।

0: वर्क स्टेशन नंबर 2 चेक करें।
1: चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने।
0: विविध भारती चेक करें।